ता के रूप न कथने जाहि, ना हिमरह न ठाके जाहि, जिन कह राम बसै मन माहि, तथे भगत वसह के लोक, रहे आनंद सच्चा मन सोई, सच खंड वसै निरंकार, कर कर विखै नदर निहाल, तिथै खंड मंडल वरपंड, जे को कथै ते अंत नांत, तिथै लो लो आकार।

चक्र चिहन अरबरंजा तरपातना हिंदे रूपरंगर रेख भेख कौ कह न सकत केह चल मूर्तन भव प्रकाश समितो केह जय कोट इंद्र इंद्राण साह साहान गणिजय त्रिपमन मिहिप सुर नर सुर नेत नेत बंत्रन कैत त्व सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत सुमत पुजंग प्रयात छंद नमस्तवं अकाले नमस्तवं कृपाले नमस्तवं रूपे नमस्तवं अनूपे नमस्तवं भेखे नमस्तवं लेखे नमस्तवं काय नमस्तवं जाय नमस्तवं गंजे नमस्तवं पंजे नमस्तवं नामे नमस्तवं ठामे नमस्तवं कर्म नमस्तवं धर्म नमस्तवं नाम नमस्तवं ताम नमस्तवं जीते नमस्तवं पीते नमस्तवं बाहि नमस्तवं टाहि नमस्तवं नीले नमस्तवं नादे नमस्तवं शेदे नमस्तवं गादे नमस्तवं गंजे नमस्तवं पंजे नमस्तं उदारि नमस्तं पारि नमस्तं सुएकं नमस्तं अनेकं नमस्तं भूते नमस्तं जूपे नमस्तं निरकर्मे नमस्तं निरपरमे नमस्तं निरदेशे नमस्तं निरपेशे नमस्तं निरनामे नमस्तं निरकामे नमस्तं निरताते नमस्तं निरकाते नमस्तं निरतूते नमस्तं भूते नमस्तं लोके नमस्तं शोके नमस्तं निरतापे नमस्तं अथापे नमस्तं ब्रह्माने नमस्तं निदाने नमस्तं गाहि नमस्तं बाहि नमस्तं त्रिवर्गे नमस्तं सर्गे नमस्तं प्रभुगे नमस्तं सुजोगे नमस्तं रंगे नमस्तं भंगे नमस्तं गम्ये नमस्तस्त्रमे नमस्तं निलासरे नमस्तं निरासरे नमस्तं जाते नमस्तं पाते नमस्तं मज्जवे नमस्तस्तज्वे अदेशं अदेशे नमस्तं अपेशे नमस्तं निर्धामे नमस्तं निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वदयाले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभूपे नमो सर्वखापे नमो सर्वथापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तस्त देवै नमस्तं भेवै नमस्तं जन्मे नमस्तं सुबन्मे नमो सर्वगौने नमो सर्वपौने नमो सर्वरंगे नमो सर्वभंगे नमो कालकाले नमस्तस् दयाले नमस्तं अभरणे नमस्तं अमरणे नमस्तं गिरारं नमस्तं कृतारं नमो सर्वतन्दे नमो स्तवन्दे नमस्तं निरशाके नमस्तं निर्वाके नमस्तं रहीमे नमस्तं करीमे नमस्तं अनन्ते नमस्तं महान्ते नमस्तस्त्रागे नमस्तं सुहागे नमो सर्वसोखं नमो सर्वपोखं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वदयाले नमो सर्वपाले चाचरी छंद त्वै प्रसाद अरूप है अनूप है अजू है अपू है अलेख है अपेघ है अनाम है अकाम है अते है अपे है अजीत है अपीत है त्रमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अपूत है अपर्ण है अगंज है अपंज है अचूत है अचंज है अमीक है रफीक है अतंद है अबंध है निर्भूज है असूज है अकाल है अजाल है अल्लाह है अजह है अनंत है महंत है अलीक है नरेसरीक है निर्लंब है।

चत्र चक्र कर्ता चत्र चक्र हर्ता चत्र चक्र दाने चत्र चक्र जाने चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र परती चत्र चक्र पाले चत्र चक्र काले चत्र चक्र पासे चत्र चक्र वासे चत्र चक्र मानिए चत्र चक्र दानिए चाचरी छंद न सत्रै न मित्रै न परमं न पित्रै न कर्मं न काये जन्मं न जाये न चित्रै न मित्रै परेह पवित्रै प्रथि सयादि सयादृशया कृसय भगवती शन्त्वै प्रसाद कहते कि आशिज दिशे क्या भिज भेसै क्या गंज कर्मै क्या पंज भरमै क्या भिज लोकै क्या आदित सोकै के अवधूत भरने के विभूत करने के राजन प्रभ है धर्मं तुझ के आशोक भरने के सर्वा भरने के जगतं कृति है कि शत्रंग क्षत्रिय के ब्रह्मं स्वरूप है के अनुपा अनुपै

सर्वं गन्ता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राण सर्वं त्राण सर्वं कर्म सर्वं धर्म सर्वं योक्ता सर्वं मुक्ता रसावल शांतु है प्रसाद। नमो नरकनाशे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे नृपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न माता न जात न पात न साकं सरीक है अमितु अमीक है सदैवं प्रभा है अजय है अजा है भगवती शंतु है प्रसाद। के जा हर जहूर है कि हाजर हजूर है हमेशा सलाम है समस्तुल कलाम है कि साहिब दिमाग है कि हुसन अल चिराग है कि कामल करीम है कि राज करहीम है कि रोजी देहंद है कि राज करहिंद है करीम उल कमाल है कि हुसन उल जमाल है गनीम उल खिराज है गरीब उल निवाज है हरी फुल सिकन है हरास उल फिकन है कलंक प्रणास है समस्तुल निवास है गंजुल गनीम है रजाय क्रहीम है समस्तुल जुबा है साके साहिब किरा है के नरकम प्रणास है बहिस्तुल निवास है किसरपुल गुबन है हमेशुल रवन है तमामलो तुमीज है समस्तुल अजीज है परम परमीस है समस्तुल अदीस है अदेशुल अलेख है हमेशुल अपेख है जिमीन उल जमा है अमी कुले मा है करीम उल कुमार है के दूरत जमाल है के अचरंग प्रकाश है के अमित तो सुभाष है के अजब स्वरूप है के अमित तो विभूत है के अमित तो प्रसा है के आत्मा प्रभा है के अचरंग अनंग है के अमित तो अपंग है मद भार छंद तुए प्रसाद। मन मन प्रणाम गुण गण मुदा मर भर अगन हर नर पर भान अनगन प्रणाम मन मन सलाम हर नर अखंड भर नर अमन अनुभव अनास मन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थल मुदाम अनछिज अंग आसने अपंग उपमा अपार गतमित उदार जल थल अमन दिस्व सपन जल थल महंत दिस्व बेअंत अनुभव अनास त्रित धर तुरास अजान बाहु इक्कै सदा ओंकार वाद कथनी अनाद खल खंड खयाल गुर बरे अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम छिजगात अजिज न बातन चंजगातन रंज बातन टुट पंडारन ठट अपार आडीठ धर्म अत ठीठ कर्म अनमृण अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद त्वै प्रसाद। करुणालय है अरकाले है खलखंडन है मैं मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है अकल कारण है सर्व उबारण है धृत के तन है जग के कर्ण है मन मानिय है जग जानिय है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्व पास्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वम पर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खलखंडस है परते पर है करुणा कर है जप जप है

करुणालय है, नृप नायक है, सर्पायक है, पापंजन है, अर्गंजन है, रिपतापन है, जप जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता करें, हरता हरें, परमात्म है, सर्व्यात्म है, आत्म बस है, जस के जस है।

रूपे नमो परम तत्व तत्व स्वरूपे नमो योग योगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्यान नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे

नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे नरकामंग विभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुतर्मंग विभूते।

अजायब भूते गजायब गनी में हरियं करियं क्रीम रही में चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते स्वयं भव सुभं सर्व।

तूर्त देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़ गड़ान के तोड़नहार सुबतन ही चक चार लवैया साहिब श्री सबको सिर नायक जाचक अनेक सो एक देवैया दान देव निंदन साचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बहुपुंज खपेंगे सात समूह प्रसन्न फिरै जग सत्र सबै अवलोक चपेंगे

हमरे दुष्ट सबै तुम काबहु आफात दै मोहि बचावहु सुखी बसै मोरो परिवार सेव सिख्य सबै करतारा।

नमस्कार तसही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पल मोहबत कियो काट काट के अंतर की जानत परे बुरे की पीर पिछानत चीटी ते कुंचन अस थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पिछाने कट कट की पट पट की जानै जब उदकर्ख करा करतारा प्रजा तरत तब दे अपारा जब अकर्ख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत दे तर सब हूं जेते बदन श्रेष्ठ सब तारा आप अपनी बूझ उचार तुम सब ही तेरे

आनंद आनंद सबको कहे आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया कर कृपा।

बहुड़ न तृष्णा लग गया ए वरस कर्मी पाइए सतगुर मिले जसवाए कह नानक होर अनरस सब विस

राग एक संग पंच बरंगन संग अलाप है आठौ नंदन प्रथम राग भैरो वै कर ही पंच रागनी संग उचर ही।

साज ना मिल साज करीजै, साज करीजै गुणहे केरी छोड़ अवगण चलिया। पहे पटंबर कर अडंबर अपना पेड़ मलिया, जिथे जाए बहिया भला कहिया। झोले अमृत पीजै गुणा का होवै, वासला कट वास लीजै। आप करे किसी आखे होर करे ना कोई, आखण ता को जाइया जे भूलड़ा होई। जे होए भूला जाए कहिया आप करता क्यों भुलै। सुने देखे बाज कहे है दान अणवंग्या देवै, दान दे दाता जग विदाता नानका सच सोई। आप करे किसी आख्या होर करे ना कोई, सूही महला पहला। मेरा मन राता गुण रवै मन भावै सोई, गुर की पौड़ी साच की साचा सुख होई। सुख सहज आवै साच भावै, साच की मत क्यों टलै। स्नान दान सुग्ञान मज्जन आप अछल्यों क्यों छलै। पर पंच मोह बेकार था के कूड़ कपट ना दोई। मेरा मन राता गुण रवै मन भावै सोई, साहिब सो सा लाहिया जिन कारुण किया। मैल लागी मन मैलिया किनै अमृत पिया, मथ अमृत पिया इहो मन दिया गुर पह मोल कराया। आपना प्रभ सहज पछाता जा मन साचा लाया, तिस नाल गुण गावा जे तिस भावा क्यों मिलै होए पराया। साहिब सो सा लाहिया जिन जगत ओ पाया, आए गया की ना आयो क्यों आवै जाता। प्रीतम से मन माने हसी तीराता, साहिब रंग राता सच की बाता। जिन बिंब का कोट ओ सारिया, पांच पूना को आप सिरंदा जिन सच का पिंड सवारिया। हम अब गणियारे तू सुन प्यारे, तुत भावै सच सोई। आवन जाना ना थी साची मत होई। अंजन तासा अंजिया जासा पिर भावै, समझै सूझै जानिया जे आप जाना आवै। आप जाना आवै मार्ग पावै, आपे मनुआ लेवे। कर्म सुकर्म कराए आपे कीमत कौन अपे वे। तंत मंत पाखंड न जाना राम हृदय मन मानिया। अंजन नाम तिसै ते सूझै गुर सबदी सच हो जानिया। साजन होवन आपने क्यों पर कर जाही, साजन रत्ते सच के संगे मन माही। मन माहे साजन करहे लिया कर्म धर्म सबाया। अठ सठ तीत पुन पूजा नाम साचा पाया। आप साजे थाप वेखै किसै भाण तिसै भाणा पाया। साजन रंग रंगी लरे रंग लाल बनाया, अंधा अगू जिये थिया क्यों पादर जाणै। आप मुसहमत होछिया क्यों राहो जाणै, क्यों राहे जावै महल पावै अंध की मत अंधली। विण नाम हर के कचना सूजै अंध बुढ़ो धंधली। दिन रात चानन चा उपजै शब्द गुर का मन वसै। कर जोड़ गुर पह कर बेनंती राहो पादर गुर दसै। मन परदेसी जे थिया सब देश पर आया, किस पह खोलो गंठड़ी दुखी परे आया। दुखी परे आया जगद सवाया, कौन जाना बिद मेरिया। आवने जावने खरे डरावने तोड़ना आवै फीरिया। ना बेहूणे ऊने झूने ना गुर शब्द सुनाया। मन परदेसी जे थिया सब देश पर आया, गुर महली कर अपना सो भर पुर लीना। सेवक सेवा ता करे सच शब्द पतीना। शब्द पतीजै अंक पीजै सो महल महला अंतरे। आप करता करे सोई प्रभ आप अंत निरंतरे। गुर शब्द मेला ता सुहेला बाजंत अनहद बीना। गुर महली कर अपना सो भर पुर लीना, कीता क्या सलाहिया कर वेखै सोई। ता की कीमत ना पवै जे लोचै कोई, कीमत सो पावे आप जाना आवे। आप भुल ना भुले जय जयकार करहे तुद पावे गुर का शब्द अमुले। हीन हो नीच करो बेनंती साच ना छोड़ो भाई, नानक जिन कर देखिया देवे मत साई। राग सूही छंत महला तीजा कर दूजा, एक ओ अहंकार सतगुर प्रसाद। सुख सोहरा हर ते आवहो गुर मखे हर फल पावहो, गुर मखे फल पावहो हर नाम ते आवहो। जन्म जन्म के दुख निवारे बलिहारी गुर अपने विट हो जिन कारज सब सवारे। हर प्रभु कृपा करे हर जाप हो सुख फल हर जन पाव हो। नानक कह सुनो जन पाई सुख सोहरा हर ते आव हो। सुन हर गुण पीने सहज पाए गुरमत सहज नाम ते आए। जिन को तुर लिखिया तिन गुरु मिलिया, तिन जन्म मरण पहो का भागा। अंदरों दुरमत दूजी खोई सो जन हल लागा। जिनको कृपा किन्नी मेरे स्वामी तिन अंदन हर गुण गाए। सुन मन पीने सहज भाए जुग मह राम नाम निस्तारा। गुर तिबजै शब्द विचारा गुर शब्द विचारा, राम नाम प्यारा जिस कृपा करे सो पाए। सहजे गुण गावे दिन राति केलविक सब गवाए। सब को तेरा तू सबना का हो तेरा तू हमारा। जुग मह राम नाम निस्तारा, साज न्याय उठे कर माही। हर गुण गावे तृप्त अगाही, हर गुण गाए सदा तृप्तासी। फिर भूख न लागे आए, दह दिस पूज होवे हर जन की जो हर हर नाम ते आए। नानक हर आपे जोड़वे छोड़े, हर बेन को दूजा नाही। साज न्याय उठे कर माही, एक ओ अहंकार सतगुर प्रसाद। राग सूही महला तीजा कर तीजा, भगत जना

करे क्या को करे अभमाना। जब अपनी जोत खिंचे तू स्वामी तब कोई करो दिखाव खियाना। आपे गुर चेला है आपे आपे गुणी निधाना। ज्यो आप चलाए तिवै कोई चाले ज्यो हर पावै भगवाना। कहत नानक तू साचा साहेब कौन जाना तेरे कामा। एक ना घर मैं दे वडे आई एक भरम पवै अभमाना। बिलावल महला तीजा पूरा तट बनाया पूरा वेखो एक समाना। इस परपंच मह सच नाम की वडे आई मत कहो तरो गमाना। सतगुर की जिसनो मत आवै सो सतगुर महे समाना। ए बाणी जो जियो जाणै तिस अंतर रवै हर नाम रहाओ। चौ जुगा का हुण नबेड़ा नर मनुखा नो एक निदाना। जित संजम तीर्थ उना जुगा का धर्म है कल मह कीर्त हर नामा। जुग जुग आपो अपना धर्म है सोध देखो बेद पराना। गुरमुख जिनी त्याया हर हर जग ते पूरे परवाना। कहत नानक सच्चे स्यो प्रीत लाए चूकै मन अभमाना। कहत सुनत सबह सुख पावै मानत पाहे निदाना। बिलावल महला तीजा गुरमुख प्रीत जिसनु आपे लाए। तित कर बिलावल गुर शब्द सुहाए। मंगल नारी गावै आए मिल प्रीतम। मंगल नारी गावै आए मिल प्रीतम सदा सुख पाए। हो तन बलिहारै जिन हर मन वसाए। हर जन को मिलिया सुख पाईऐ हर गुण गावै सहज सुभाए। रहाओ सदा रंग राते तेरे चाए हर जियो आप बसै मन आए। आपे सोभा सद ही पाए गुरमुख मेलै मेल मिलाए। गुरमुख राते शब्द रंगाए निज घर वासा हर गुण गाए। रंग चलूलै हर रस पाए एहो रंग कदे ना उतरै साच समाए। अंतर शब्द मिटिया अग्ञान अंधेरा सतगुर ज्ञान मिलिया प्रीतम मेरा। जो सच राते तिन बहुड़ ना फेरा नानक नाम दरड़ाए पूरा गुर मेरा। बिलावल महला तीजा पूरे गुर ते वडियाई पाई अचिंत नाम वसिया मन आई। हमै माया शब्द जलाई दर साचै गुर ते सोभा पाई। जगदीश सेवो मैं अवर ना काजा अंदन अनद होवै मन मेरा। गुरमुख मांगो तेरा नाम निवाजा रहाओ मन की प्रतीत मन ते पाई। पूरे गुर ते शब्द बजाई जीवन मरण को समसर वेखै बहुड़ न मरै जहां ना जम पेखै। कर ही मह सब कोट निदान सतगुर दिखाए गया अभमान। सद ही लागा सहित्यान अंदन गावे इको नाम। इस जुग मह वडे आई पाई इस जुग मह वडे आई पाई। पूरे गुरते नाम ते आई जह देखा तै रहया समाई। सुख सदा सुख दाता कीमत नहीं पाई। पूरे भाग गुर पूरा पाया अंतर नाम निदान दिखाया। गुर का शब्द अति मीठा लाया नानक त्रिसन बुझी मन तन सुख पाया। राग बिलावल महला चौथा घर तीजा इको ओ अंकार सतगुर प्रसाद। उद्दम मत प्रभे अंतर जामी ज्यो प्रेरे त्यो करना। ज्यो नटुआ तंत वजाए तंती त्यो वाजै जंत जना। जप मन राम नाम रसना मस्तक लिखत लिखे गुर पाया हर हिरदय हर बसना। रहाओ माया ग्रस्त भ्रमत है प्राणी रख ले वो जने अपना। ज्यो प्रहलाद हणाक्ष ग्रस्यो हर राख्यो हर सरना। कवन कवन की गत मित कही हर किए पतत पवना। ओ ढोवै ढोर हाथ चम चमरे हर उदरयो परयो सरना। प्रभ दीन दयाल भगत भव तारन हम पापी राख पपना। हर दासन दास दास हम करियो जन नानक दास दास सन्ना। बिलावल महला चौथा हम मूर्ख मुग्ध अज्ञान मती शरणागत पुरख अजन्मा। कर कृपा रख ले बहु मेरे ठाकुर हम पाथरहीन अकर्मा। मेरे मान भज राम नाम रामा गुरमत हर रस पाईऐ और त्यागो निफल काम। रहाओ हर जन सेवक से हर तारे हम निरगुण राख उपमा। तुझ बिन अवर ना कोई मेरे ठाकर हर जपियै वडे करमा। नामहीन त्रिग जीवते तिन वड दुख सहमा। ओए फिर जोन पवाईऐ मंद भागी मूढ़ अकर्मा। हर जन नाम आधार है तुर पूर्व लिखे वड करमा। गुर सतगुर नाम दरड़ाया जन नानक सफल जनम। बिलावल महला चौथा
हमरा चित लुभत मोहे बिकिया बहु दुर्मत मैल परा तुमरी सेवा कर ना सकै प्रभ हम क्यों कर मुग्ध तरा मेरे मन जप नर हर नाम नर हरा जन ऊपर कृपा प्रभ धारी मिल सतगुर पार परा रहाओ हमरे पिता ठाकुर प्रभ स्वामी हर देहो मती जस करा तुमरे संग लगे से उदरे जो संग काष्ट लोह तरा साकत नर होची मत मदम जिन हर हर सेवना करा ते नर भागहीन दोहचारी ओए जन्म मोए फिर मरा जिन को तुम हर मेलो हो स्वामी ते नाए संतोख गुरसरा दुरमत मैल गई हर भजया जन नानक पार परा बिलावल महला चौथा आवो संत मिलो मेरे पाई मिल हर हर कथा करो हर हर नाम बोत है कल युग खेबट गुर शब्द तरो मेरे मन हर गुण हर उचरो मस्तक लिखत लिखे गुण गाए मिल संगत पार परो रहाओ काया नगर मह राम रस उत्तम क्यों पाइए उपदेश जान करो सतगुर सेव सफल हर दर्शन मिल अमृत हर रस पियाओ हर हर नाम अमृत हर मीठा हर संत हो चाक देखो गुरमत हर रस मीठा लागा तिन बिसरे सब बिख रसो हो राम नाम रस राम रसायन हर सेवो संत जन हो चार पदार्थ चारे पाए गुरमत नानक हर भजहो बिलावल महला चौथा खत्री ब्राह्मण सूद वैस को जापै हर मंत्र जापै नी गुर सतगुर पार ब्रह्म कर पूजो नित सेवो दिन सब रैनी हर जन देखो सतगुर नैनी जो इच्छो सोई फल पावो हर बोलो गुरमत बैनी रहाओ अनक पाव चित व्याह बहु तेरे सा होवै जे बात होवै नी अपना भला सब कोई वाचै सो करै जे मेरा चित ना चितै नी मन की मत त्यागो हर जन एहा बात कठैनी अंदन हर हर नाम त्यावो गुर सतगुर की मत लैनी मत सुमत तेरे बस स्वामी हम जंत तू पुरख जनतैनी जन नानक के प्रभ करते स्वामी जो पावै तवै बुलैनी बिलावल महला चौथा अनद मूल त्यायो पुरखोतम अंदन अनद अनंदे धर्मराय की कान चुकाई सब चूके जमके चंदे जप मन हर हर नाम गोबिंदे बड़पागी गुर सतगुर पाया गुण गाए परमानंदे रहाओ साकत मूड माया के बदक विच माया फिरे फिरंदे त्रिसना चालत किरत के बाधे ज्यो तेली बलद पवंदे गुरमुख सेव लगे से उदरे बड़पागी सेव करंदे जिन हर जपया तिन फल पाया सब टूटे माया फंदे आपे ठाकुर आपे सेवक सब आपे आप गोविंदे जन नानक आपे आप सब वरतै ज्यो राखै तवै रहंदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग बिलावल महला चौथा पड़ताल घर तेरवा बोलो भैया राम नाम पतत पावनो हर संत भगत तारनो हर भार पुरे रहिया जल थले राम नाम नित गाइया हर दुख बिसारनो रहाओ हर किया है सफल जन्म हमारा हर जपया हर दुख बिसारन हारा गुर भेटिया है मुक्त दाता हर की हमारी सफल जाता मिल संगती गुण गावनो मन राम नाम कर आसा पाऊ दूजा बिनस बिनासा बिच आसा होए नरासी जो सो जन मिलिया हर पासी कोई राम नाम गुण गावनो जन नानक तिस पग लावनो राग बिलावल महला पंजवा चौप दे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद नदरी आवै तिस सियो मोह क्यों मिलिया प्रभ अबनासी तोहे कर कृपा मोहि मार्ग पावो साध संगत कै अंचल लावो क्यों तरिया बिखिया संसार सतगुर बोहित पावै पार रहाओ पवन चुलारे माया दे हर के भगत सदा थिर से हरख सोग ते रहै निरारा सिर ऊपर आप गुरु रखवारा पाया वेण माया सर्ब पोयंगा होमै पचे दीपक देख पतंगा सगल सीगार करे नहीं पावै जा होए कृपाल ता गुरु मिलावै हो फिरो उदासी मैं एक रतन दसाया निर्मोल के हीरा मिले ना उपाया हर का मंदिर तिस महलाल गुर खोलिया पड़दा देख पई निहाल जिन चाख्या तिस आया साध जो गूंगा मन मह बिस्माद आनद रूप सब नदरी आया ना जन नानक हर गुण आख समाया बिलावल महला पंजवा सर्ब कल्याण किए गुरदेव सेवक अपनी लायो सेव बिघन न लागै जप अलख अभेव धरत पुनीत गई पई गुण गाए
ਧਰਤ ਪੁਨੀਤ ਭਈ ਗੁਣ ਗਾਏ ਦੁਰਤ ਗਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇ ਰਹਾਉ ਸਭਨੀ ਥਾਈਂ ਰਵਿਆ ਆਪ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦ ਜਾ ਕਾ ਬੜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾ ਹੋਏ ਸੰਤਾਪ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਲੱਗੇ ਮਨ ਮੀਠੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਹੋਏ ਸਭ ਥਾਈਂ ਬੂਠੇ ਸਭ ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਤੂਠੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਭਏ ਰਖਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦੀਸੈ ਨਾਲੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਖਸਮ ਪ੍ਰਤ ਪਾਲੇ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਅਗਨਤ ਗੁਣ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਮੋਹੇ ਨਾਥ ਤੁਮਰੀ ਸਰਣਾਈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਚਰਨ ਤੇ ਆਈ ਦਇਆ ਕਰੋ ਬਸੋ ਮਨ ਆਏ ਮੋਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਲੀਜਾ ਲੜ ਲਾਏ ਰਹਾਉ ਪ੍ਰਭ ਚਿੱਤਾ ਵੈ ਤਾਂ ਕੈਸੀ ਭੀੜ ਹਰ ਸੇਵਕ ਨਾਹੀ ਜਮ ਪੀੜ ਸਰਬ ਦੁਖ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਨਸੇ ਜਾ ਕੈ ਸੰਗ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਬਸੈ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਤਨ ਆਧਾਰ ਬਿਸਰਤ ਨਾਮ ਹੋਵਤ ਤਨ ਚਾਰ ਪ੍ਰਭ ਚਿੱਤ ਆਏ ਪੂਰਨ ਸਭ ਕਾਜ ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਭ ਕਾ ਮੋਹਤਾਜ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਦੁਰਮਤ ਰੀਤ ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਮੰਤ ਨਾਨਕ ਭਗਤਨ ਕਹਿ ਘਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਘਰ ਦੂਜਾ ਯਾਨੜੀਏ ਕਹਿ ਘਰ ਗਾਵਣਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੈਂ ਮਨ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਮਨ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਅਵਰ ਸਿਆਣਪਾਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਪਿਆਰੇ ਰਾਖਨ ਕਹੋ ਤੁਮ ਏਕ ਰਹਾਓ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਜੇ ਮਿਲੈ ਪਿਆਰੇ ਸੋ ਜਨ ਹੁਤ ਨਿਹਾਲਾ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਸਨੂੰ ਹੋਏ ਦਇਆਲਾ ਸਫਲ ਮੂਰਤ ਗੁਰਦੇਉ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਜੀਵਾ ਸੋਏ ਤਿੰਨਾ ਕੀ ਜਿਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਅਰਾਧੈ ਨਾਮ ਬਖਾਣਾ ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਮਨ ਰਤਾ ਸੇਵਕ ਜਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਮੰਗੈ ਪੂਰਾ ਕਰਮ ਕਮਾਵਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਆਮੀ ਤੇਰੇ ਜਨ ਦੇਖਣ ਪਾਵਾਂ ਬੜਭਾਗੀ ਸੇ ਕਾਢੀਐ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਜਨਵਾਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਐ ਨਿਰਮਲ ਮਨੈ ਹੋਵੈ ਪ੍ਰਗਾਸੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਕਾਟੀਐ ਪਿਆਰੇ ਚੁੱਕੈ ਜਮਕੀ ਕਾਣੇ ਤਿਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਰਸਨ ਨਾਨਕ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਪਾਣੇ ਊਚ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਗਾਵਤੇ ਉਧਰੈ ਸੁਣਤੇ ਉਧਰੈ ਬਿਨਸੈ ਪਾਪ ਕਨੇਰੇ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਧ ਕਉ ਤਾਰੇ ਪਾਹਨ ਪਾਰ ਉਤਾਰੈ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣ ਆਈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰੈ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਵਿਖੇ ਬਨ ਫੀਕਾ ਤਿਆਗ ਰੀ ਸਖੀਏ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਪੀਓ ਬਿਨ ਰਸ ਚਾਕੇ ਬੁੱਢ ਗਈ ਸਗਲੀ ਸੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵਤ ਜੀਓ ਮਾਨ ਮਹਤ ਨ ਸਖਤ ਹੀ ਕਾਈ ਸਾਧਾ ਦਾਸੀ ਤੀਓ ਨਾਨਕ ਸੇ ਦਰ ਸੋਭਾ ਬੰਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਕੀਓ ਹਰਜ ਚੰਦੌਰੀ ਚਿੱਤ ਭ੍ਰਮ ਸਖੀਏ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਦੁਰਮ ਛਾਇਆ ਚੰਚਲ ਸੰਗ ਨ ਚਾਲਤੀ ਸਖੀਏ ਅੰਤ ਤਜ ਜਾਵਤ ਮਾਇਆ ਰਸ ਭੋਗਣ ਅਤ ਰੂਪ ਰਸ ਮਾਤੇ ਇਨ ਸੰਗ ਸੁਖ ਨ ਪਾਇਆ ਧਨ ਧਨ ਹਰ ਸਾਧ ਜਨ ਸਖੀਏ ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਜਾਏ ਵਸੋ ਬਡ ਭਾਗਣੀ ਸਖੀਏ ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਸਮਾਈਐ ਤੈ ਦੁਖ ਨ ਭੂਖ ਨ ਰੋਗ ਬਿਆਪੈ ਚਰਨ ਕਮਲ ਲਿਵਲਾਈਐ ਤੈ ਜਨਮ ਨ ਮਰਨ ਨ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਨਿਚਲ ਸਰਣੀ ਪਾਈ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਬਚੋ ਨਮੋ ਵਿਆਪੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਏਕ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਾਰ ਮਨ ਬੇਧਿਆ ਪਿਆਰੇ ਰਤੜੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਸੇ ਸੁਹਾਵੀ ਸੰਗ ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅਨੰਦ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਏ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਰਾਮ ਰੰਗ ਰਾਤੀ ਮਨ ਤਨ ਚੁੱਪ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਅਚਰਜ ਅਚਰਜ ਸਿਓ ਮਿਲਿਆ ਕਹਿਣਾ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਏ ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਘਰ ਚੌਥਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਏਕ ਰੂਪ ਸਗਲੋ ਪਾਸਾਰਾ ਆਪੇ ਬਨ ਜਾਪ ਬਿਓਹਾਰਾ ਐਸੋ ਗਿਆਨ ਬਿਰਲੋਈ ਪਾਏ ਜਤ ਜਤ ਜਾਈਐ ਤਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਏ ਰਹਾਉ ਅਨਕ ਰੰਗ ਨਿਰਗੁਣ ਇੱਕ ਰੰਗਾ ਆਪੇ ਜਲ ਆਪ ਹੀ ਤਿਰੰਗਾ ਆਪ ਹੀ ਮੰਦਰ ਆਪ ਹੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਹੀ ਪੁਜਾਰੀ ਆਪ ਹੀ ਦੇਵਾ ਆਪੇ ਯੋਗ ਆਪ ਹੀ ਜੁਗਤਾ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਦ ਹੀ ਮੁਕਤਾ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਆਪ ਉਪਾਵਨ ਆਪ ਸਧਰਨਾ ਆਪ ਕਰਾਵਨ ਦੋਸ ਨਾ ਲੈਣਾ ਆਪਨ ਬਚਨ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆਪਨ ਵਿਪਾਉ ਆਪ ਹੀ ਜਰਨਾ ਰਹਾਉ ਆਪ ਹੀ ਮਸ਼ਟ ਆਪ ਹੀ ਬੁੱਲਣਾ ਆਪ ਹੀ ਅਚਾਲਣਾ ਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਆਪ ਹੀ ਗੁਪਤ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟਣਾ ਆਪ ਹੀ ਘਟ ਘਟ ਆਪ ਅਲਿਪਨਾ ਆਪੇ ਅਵਗਤ ਆਪ ਸੰਗ ਰਚਨਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਭ ਜਚਨਾ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਭੁੱਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੇ ਬਤਾਇਆ ਐਸਾ ਗੁਰਬੜ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ ਸਿਮਰ ਮਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ ਵਸ ਰਹੇ ਹਿਰਦੈ ਗੁਰ ਚਰਨ ਪਿਆਰੇ ਰਹਾਉ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹੇ ਮਨ ਲੀਨਾ ਬੰਧਨ ਘਟ ਮੁਕਤ ਗੁਰ ਕੀਨਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰਤ ਜਨਮ ਫੁਨ ਬੂਆ ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰ ਆਸਰਮ ਦੀਆ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਬੂਟਤ ਸੰਸਾਰਾ ਨਾਨਕ ਬਾਹ ਫਕਰ ਸਤ ਗੁਰ ਨਿਸਤਾਰਾ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਅਰਪੋ ਸਵ ਅਪਣਾ ਕਵਨ ਸੋ ਮਤ ਜਿਤ ਹਰ ਹਰ ਜਪਨਾ ਕਰ ਆਸਾ ਆਇਓ ਪ੍ਰਭ ਮੰਗਨ ਤੁਮ ਪੇਖ ਤਸੋਭਾ ਮੇਰੈ ਆਂਗਨ ਰਹਾਉ
अनक जुगत कर बहुत बिचारू, साध संग इस मन है उदारू, मत बुद्ध सुरत नाई चुतराई, ता मिलिए जा लय मलाई, नैन संतोखे प्रभ दर्शन पाया, कहो नानक सफल सो आया। बिलावल महला पंजवा, मात पिता सुत साथ नमाया, साध संग सब दुख मिटाया, रब रहया प्रभ सब मह आपे, हार जप रसना दुख नाम ब्यापे, रहाओ तिखा भूख बहुत तप्त ब्यापया, शीतल पए हर हर जस जापया, कोट जतन संतोख न पाया, मन तृपताना हर गुण गाया, देहो भगत प्रभे अंतर जामी, नानक की बेनंती स्वामी। बिलावल महला पंजवा, गुरपुरा बड़भागी पाई है, मिल साधु हर नाम ते आई है, पार ब्रह्म प्रभ तेरी सरना, किलबिक कट है भज गुर के चरना, रहाओ अवर कर्म सब लोकाचार, मिल साधु संग होए उदार, सिमरत शास्त्र वेद बीचारे, जपिया नाम जित पार उतारे, जन नानक कहो प्रभ कृपा करिए, साधु धूर मिले निस्तरिय। बिलावल महला पंजवा, गुर का शब्द हृदय मैं चीना, सगल मनोरथ पूर्ण आसीना, संत जना का मुख उजल कीना, कर कृपा अपना नाम दीना, रहाओ अंधकूप ते कर गहलीना, जय जयकार जगत प्रगटीना, नीचा ते ऊच ऊन पूरीना, अमृत नाम महारस लीना, मन तन निर्मल पाप जल कीना, कहो नानक प्रभ पय परसीना। बिलावल महला पंजवा, सगल मनोरथ पाइय मीता, चरण कमल स्यो लाइय चीता, हो बलिहारी जो प्रभु ते आवत, जलन बुझै हर हर गुण गावत, रहाओ सफल जन्म होवत बड़भागी, साध संग रामै लिबलागी, मत पत धन सुख सहजानंदा, एक निमक ना बिसरहो परमानंदा, हर दन दर्शन की मन प्यास कनेरी, भन्नत नानक सरण प्रभ तेरी। बिलावल महला पंजवा, मोहे निर्गुण सब गुणे बिहुना, दया तार अपना कर लीना, मेरा मन तन हर गोपाल सुहाया, कर कृपा प्रभ कर मैं आया, रहाओ भगत बचल पै घट नहारे, संसार सागर अब उतरे पारे, पतत पावन प्रभ बिरद बेद लेखिया, पार ब्रह्म सो नैनो पेखिया, साध संग प्रगटे नारायण, नानक दास सब दुख पलायण। बिलावल महला पंजवा, कवन जाने प्रभ तुमरी सेवा, प्रभ अवनासी अलख अपेवा, गुण बेअंत प्रभ गहर गंभीरे, ऊच महल स्वामी प्रभ मेरे, तू अपरंपुर ठाकर मेरे, रहाओ एक बिन नाही को दूजा, तुम ही जानो अपनी पूजा, आप हो कछु न होवत पाई, जिस प्रभ देवै सो नाम पाई, कहो नानक जो जन प्रभ पाया, गुण निदान प्रभ तिन ही पाया। बिलावल महला पंजवा, मात गर्भ मैं हाथ दे राखिया, हर रस छोड़ बिकिया फल चाखिया, भज गोबिंद सब सोड़ जंजाल, जब जम आए संघारै मूड़े, तब तन बिन सजाए बेहाल, रहाओ तन मन तन अपना कर थापिया, करन हार एक निमक ना जापिया, महामोह अंधकूप परिया, पार ब्रह्म माया पटल बिसरिया, बड़ा भाग प्रभ कीर्तन गाया, संत संग नानक प्रभ पाया। बिलावल महला पंजवा, मात पिता सुत बंद पाई, नानक हुआ पार ब्रह्म सहाय, सुख सहज आनंद कणे, गुर पूरा पूरी जाके बाणी, अनक गुणा जाके जाहे ना गणे, रहाउ सगल सरंजाम करे प्रभ आपे, पय मनोरथ सो प्रभ जापे, धर्म अर्थ धर्म काम मोख का दाता, पूरी पई समिर सिमर बिदाता, साध संग नानक रंग माणिया, कर आया पूरे गुर आणिया। बिलावल महला पंजवा, सरब निदान पूरन गुरदेव रहाओ, हर हर नाम जपत नर जीवे, मर खुआर साकत नर तीवे, राम नाम हुआ रखवारा, झक मारो साकत बेचारा, निंदा कर कर पचै कनेरे, मृतक फास गलै सिर पैरे, कहो नानक जपै जन नाम, ताके निकट ना आवै जाम। राग बिलावल महला पंजवा, घर चौथा दोप दे एक ओंकार, सतगुर प्रसाद कवन संजोग मिलो प्रभ अपने, पल पल निमख सदा हर जपने, चरण कमल प्रभ के नित त्यावो, कवन सो मत जित प्रीतम पावो, रहाओ ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे,
हर नानक बिसरना काहू बेरे बिलावल महला पंजवा चरण कमल प्रभ हृदय त्याए रोग गए सगले सुख पाए गुर दुख काटिया दीनो दान सफल जन्म जीवन परवान रहाओ अकत कथा अमृत प्रभ बानी कहो नानक जप जीवे ज्ञानी बिलावल महला पंजवा सात पाई गुर सतगुर पूरे सुख उपजे बाजे अनहद तूरे रहाओ ताप पाप संताप बिनासे हर सिमरत किलिवख ना सब नासे आनंद करो मिल सुंदर नारी गुरु नानक मेरी पै सवारी बिलावल महला पंजवा ममता मोह ध्रोह मद माता बंधन बाध्या अत बिकराल दिन दिन सिजत बिकार करत औध पाही पाता जमकै जाल तेरी शरण प्रभ दीन दयाला महा बिखम सागर अत पारी उधरो साधु संगर वाला रहाओ प्रभ सुखदाते समरत स्वामी जियो पिंड सब तुमरा माल भ्रम के बंधन काटो परमेसर नानक के प्रभ सदा कृपाल बिलावल महला पंजवा सगल आनंद किया परमेसर अपना बिरद सुमारिया सद जना होए कृपाला बिकसे सब परवारिया कारज सतगुरे आप सवारिया वड्डी आर जा हर गोबिंद की सुख मंगल कल्याण बीचारिया रहाओ वन तृण तृण भवन हरिया होए सगले जी साधारिया मन इचे नानक फल पाए पूर्ण इच पुजारिया बिलावल महला पंजवा जिस ऊपर होव त दयाल हर सिमरत काटै सो काल रहाओ साध संग भजिया गोपाल गुण गावत टूटै जम जाल आपे सतगुर आपे प्रतपाल नानक जाचै साध रिवाल बिलावल महला पंजवा मन में सिंचो हर हर नाम अंदन कीर्तन हर गुण गाम ऐसी प्रीत करो मन मेरे आठ पहर प्रभ जानो नेरे रहाओ कहो नानक जाके निर्मल भाग हर चरणी ताका मन लाग बिलावल महला पंजवा रोग गया प्रभ आप गवाया नींद पई सुख सहज कर आया रहाओ रज रज भोजन खावो मेरे पाई अमृत नाम रिद माहे त्याई नानक गुर पूरे सरनाई जिन अपने नाम की पैज रखाई बिलावल महला पंजवा सतगुर कर दीने अस्थर घर बार रहाओ जो जो निंद करै इन ग्रहण की तिस आग्या ही मारै करतार नानक दास ताकी सरनाई जाको शब्द अखंड अपार बिलावल महला पंजवा ताप संताप सगले गए बिन से ते रोग पार ब्रह्म तू बख्सिया संतन रस भोग रहाओ सर्ब सुखा तेरी मंडली तेरा मन तन आरोग गुण गावो नितराम के ए अवखद जोग जाए बसो कर देस मैं ए भले संजोग नानक प्रभ सो प्रसन्न भय लै गए बेयोग बिलावल महला पंजवा काहू संग ना चाल ही माया जंजाल ऊट सदारे सतरपत संतन कह ख्याल रहाओ अहमुद को बिनसना हे तुरकी टाल बहुजोनी जन्मै मरै बिख्या बिकराल सत बचन साधु कह नित जपै गोपाल सिमर सिमर नानक तरे हर के रंग लाल बिलावल महला पंजवा सहज समाध आनंद सुख पूरे गुरदीन सदा सहाय संग प्रभ अमृत गुण चीन रहाओ जय जय कार जगत्र मैं लुचे सब जिया सो प्रसन्न भय सतगुर प्रभु कछ बिघन न तिया जाका अंग दयाल प्रभ ताके सब दास सदा सदा बड़े आईया नानक गुर पास राग बिलावल महला पंजवा घर पंजवा चौप दे एक ओंकार सतगुर प्रसाद मृत मंडल जग साजिया ज्यो बालू कर बार बिन सतबार न ला गई ज्यो कागद बूंदार सुन मेरी मनसा मनै माहे सत देख विचार सिद्ध साध गिरे ही जोगी तज गए कर बार जय रहाओ जैसा सुपना रैन का तैसा संसार दृष्ट मान सब बिनसिया क्या लगै गवार कहा सुपाई मीतै देख नैन पसार एक चाल सह सब अपनी बार जिन पूरा सतगुर सेवया से अस्थिर हर द्वार जन नानक हर का दास है राख पैज मुरार बिलावल महला पंजवा लोकन किया बड़े आइया बैसंतर पागो जो मिलै प्यारा अपना ते बोल करागो ज्यो प्रभ जियो दयाल होए तो भगती लागो लपट रहे हो मन बासना गुर मिल एह त्यागो रहाओ करो बेनती अत कनी एहो जियो हो मागो अर्थ आन सब बारिया प्रे निमख सोहागो पंच संग गुर ते छुटे दोख अर रागो हृदय प्रगास प्रगट पया निसबास रजागो शरण सुहागन आया जिस मस्तक पागो कहो नानक तन पाया तन मन सीत लागो बिलावल महला पंजवा
ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸ ਕੌ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਕੇ ਬੜਪਾਗਾ ਮਹਿਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਹਿ ਲਾਗੈ ਦਾਗਾ ਪ੍ਰਾਪਾਇਆ ਸੁਖਦਾਈਆ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਹਿ ਸਮਾਨਾ ਭੀਤਰੇ ਛੋਡਿਆ ਨਹਿ ਜਾਏ ਰਹਾਉ ਜਰਾ ਮਰੈ ਨਹਿ ਵਿਆਪੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨ ਪਾਇਆ ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਗਾਨਿਆ ਗੁਰ ਅਮਰ ਕਰਾਇਆ ਸੋ ਜਾਨੈ ਜਨ ਚਾਖਿਆ ਹਰਨਾਮ ਅਮੋਲਾ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈਐ ਕਿਆ ਕਹਿ ਮੁੱਖ ਬੋਲਾ ਸਫਲ ਦਰਸ ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਣ ਨਿਦ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਪਾਵੋ ਧੂਰ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਕੀ ਨਾਨਕ ਕੁਰਬਾਣੀ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਰਾਖੋ ਆਪਣੀ ਸਰਣ ਪ੍ਰਭ ਮੋਹੇ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣੂ ਨੀਚ ਮੂਰਕਾਰੇ ਮਾਨ ਕਰੋ ਤੁਧ ਉਪਰੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਸਦ ਭੂਲਤੇ ਤੁਮ ਬਖਸਨ ਹਾਰੇ ਰਹਾਉ ਹਮ ਅਵਗਨ ਕਰਹਿ ਅਸੰਖ ਨੀਤ ਤੁਮ ਨਿਰਗੁਣ ਦਾ ਤਾਰੇ ਦਾਸੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਆਗ ਏ ਕਰਮ ਹੁਮਾਰੇ ਤੁਮ ਦੇਵੋ ਸਭ ਕਿਛ ਦਇਆ ਧਾਰ ਹਮ ਕਿਰਤ ਕਨਾਰੇ ਲਾਗ ਪਰੇ ਤੇਰੇ ਦਾਨ ਸਿਓ ਨੈ ਚਿਤ ਖਸੁਮਾਰੇ ਤੁਸ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਭਵ ਕੱਟ ਨਹਾਰੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਰਣ ਦਿਆਲ ਗੁਰ ਲਿਹੋ ਮੁਗਧ ਉਦਾਰੇ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਦੋਸ ਨਾ ਕਾਹੂ ਦੀਜੀਐ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਧਿਆਈਐ ਜਿਤ ਸੇਵੈ ਸੁਖ ਹੋਏ ਘਨਾ ਮਨ ਸੋਈ ਗਾਈਐ ਕਹੀਐ ਕਾਏ ਪਿਆਰੇ ਤੁਝ ਬਿਨਾ ਤੁਮ ਦਇਆਲ ਸੁਆਮੀ ਸਭ ਅਵਗਨ ਹਮਾ ਰਹਾਉ ਜਿਓ ਤੁਮ ਰਾਖੋ ਤਿਉ ਰਹਾ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਚਾਰਾ ਨੀ ਦਰਿਆ ਦਰ ਤੇਰੀਆ ਇੱਕ ਨਾਮ ਅਧਾਰਾ ਜੋ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸੋਈ ਭਲਾ ਮਨ ਲਿਤਾ ਮੁਕਤਾ ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇਰੀ ਆ ਸਭ ਤੇਰੀ ਜੁਗਤਾ ਚਰਨ ਪਕਾਰੋ ਕਰ ਸੇਵਾ ਜੇਠਾ ਕਿਰਪਾਵੈ ਹੋ ਕਿਰਪਾਲ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਮ੍ਰਿਤ ਹਸੈ ਸਿਰ ਉਪਰੇ ਪਸੂਆ ਨਹੀਂ ਪੂਜੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਹੰਕਾਰ ਮੈਂ ਮਰਣਾ ਨਹੀਂ ਸੂਜੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੋ ਆਪਣਾ ਕਾਹੇ ਫਿਰੋ ਅਭਾਗੇ ਦੇਖ ਕੁਸੁੰਭਾ ਰੰਗਲਾ ਕਾਹੇ ਭੂਲ ਲਾਗੇ ਰਹਾਉ ਕਰ ਕਰ ਬਾਪ ਕਰ ਕਰ ਪਾਪ ਦਰਬ ਕੀਆ ਵਰਤਣ ਕਹਿਤਾਏ ਮਾਟੀ ਸਿਉ ਮਾਟੀ ਰਲੀ ਨਾਗਾ ਉੱਠ ਜਾਈ ਜਾ ਕਹਿ ਕੀਐ ਸ਼ਰਮ ਕਰੈ ਤੇ ਬੈਰ ਬਰੋਧੀ ਅੰਤਕਾਲ ਭਜ ਜਾਹੇ ਗੇ ਕਹਿ ਜਲੋ ਕਰੋਧੀ ਦਾਸ ਰੇਣ ਸੋਈ ਹੋਆ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਕਰਮਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਰਨਾ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ ਖਲ ਚਤਰ ਬਕੀਤਾ ਅੰਧਲੇ ਤ੍ਰਿਪਵਣ ਸੂਜਿਆ ਗੁਰ ਭੇਟ ਪਨੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਮੈਲ ਖੋਈ ਕੋਟ ਅਗ ਹਰੇ ਮੈਲ ਖੋਈ ਕੋਟ ਅਗ ਹਰੇ ਨਿਰਮਲ ਪੈ ਚੀਤਾ ਰਹਾਉ ਐਸੀ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਕੀਟ ਹਸਤੀ ਜੀਤਾ ਜੋ ਜੋ ਕੀਨੋ ਆਪਣੋ ਤਿਸ ਅਭੈ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘ ਬਲਾਈ ਹੋਏ ਗਇਓ ਤਿਰਣ ਮੇਰਦ ਕੀਤਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰਤੇ ਦਮ ਆਡ ਕਉ ਤੇ ਗਨੀ ਤਨੀਤਾ ਕਵਨ ਬੜਾਈ ਕਹਿ ਸਕੋ ਬੇਅੰਤ ਗੁਨੀਤਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹੇ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਨਾਨਕ ਦਰ ਸਰੀਤਾ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਬਾਦ ਨੀਤ ਲੋਭ ਰਸਨਾ ਸਾਧ ਲਪਟ ਕਪਟ ਗ੍ਰਹਿ ਬੇਦਿਆ ਮਿਥਿਆ ਬਕਿਆਦ ਐਸੀ ਪੇਕੀ ਨੇਤਰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਜ ਮਿਲਕ ਧਨ ਜੋ ਬਨਾ ਨਾ

0: राम
1: कार्योग
0: पीर गई
1: गुरु की
0: बांदी
1: साची
0: मंदी
1: निभाती।
0: राम होए अंदर तो
1: गुरु प्यारे,
0: नहीं
1: गुरु रूप, गुरु
0: उपजो
1: खालसा,
0: जाओ
1: साध
0: बलन
1: संगत
0: प्रभु
1: जी,
0: प्रीतम
1: सारे गज बज के फतेह बुलाओ जी।
0: परहन
1: वाहिगुरु जी का खालसा,
0: जाए
1: वाहिगुरु जी की फतेह।
0: किनी
1: जुगो जुगे अटल, चबर तख छत्र दे
0: अनको
1: मालक,
0: भगत
1: गुरता
0: जन
1: गद्दी ते
0: सारी
1: सुभायमान,
0: सिमरन
1: जागदी जोत, धन धन साहिब, श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज
0: अगले
1: जी ने
0: टेक निर्धन
1: बड़ी अपार कृपा
0: सान
1: रहमत
0: पायो
1: बख्शिश कीती है।
0: प्रभु नानक
1: जो अज इस पावन दरबार दे विच
0: गुनी
1: दो परिवारों का सुमेर होने जा रहा है,
0: राग बुलावल
1: ऐस खुशी दे
0: मल्ला
1: मौके ते दास
0: पंजवा
1: खालसा दीवान
0: तीरवा
1: सोसाइटी
0: पताल एको
1: गुरुद्वारा साहिब
0: ओंकार
1: सुख सागर दे समूह सेवादारा वालों
0: प्रसाद
1: आप दूर नेड़े है सारे
0: मोड़ा
1: पतवते सतनाम
0: है
1: दा
0: हर
1: कह दो
0: कजर
1: धन्यवाद
0: वातर अपन कीने
1: अतनी का जीवन कर रहे हैं।
0: ओडीनी ओडीनी ओडीनी
1: अज
0: कब
1: जिथे असि
0: करया
1: सतगुरु दे
0: वै
1: चरणा विच बैठ
0: रीरा
1: के
0: चरण सुहागन चरण
1: एक
0: शीश
1: जोड़ी
0: धर
1: दा आनंद
0: लालन
1: कारज
0: मोहे मलावो
1: बच्चा नु सीस देने वास्ते पहुंचे
0: कब
1: आ
0: कर
1: उठे ही
0: आवे
1: अज
0: री
1: तन तन साहिब श्री
0: सुनो
1: गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी
0: सेरी
1: दा
0: मिलन
1: पहला प्रकाश
0: बात
1: पर्व भी है।
0: कहो
1: सो आप समूह संगत
0: सगरो
1: नु
0: अहंग
1: सतगुरां दे
0: मटावो
1: पहले प्रकाश पर्व
0: तो
1: दी लख
0: कर ही
1: लख
0: लालन
1: वधाइयां जी।
0: पावो ताबो
1: ऑन
0: राज
1: बिहाफ ऑफ खालसा दीवान
0: मंगल
1: सोसाइटी
0: गुण गावो
1: गुरुद्वारा
0: अंदर
1: साहिब सुख
0: रूप ते
1: सागर,
0: आवो
1: आई वुड लाइक टू
0: नानक
1: वार्म दी
0: द्वार
1: वेलकम इन फ्रंट ऑफ
0: आयो
1: यू
0: तो मैं
1: हु
0: लाल
1: केम
0: न
1: हियर ऑल द वे
0: पायो
1: टू
0: री
1: ब्लेस दिस ब्यूटीफुल कपल
0: मोहन
1: इज
0: रूप
1: नाउ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ श्री
0: दिखावे
1: गुरु ग्रंथ
0: अब
1: साहिब
0: वे
1: महाराज।
0: नींद सुहावे
1: थैंक यू सो मच
0: सब
1: एवरीबॉडी
0: मेरी
1: फॉर
0: दिखा
1: कमिंग हियर टुडे
0: बुझानी अब मैं
1: एज
0: सहज
1: यू विटनेस
0: समानी
1: टू सोल्स
0: मीठी
1: मर्जिंग
0: पेरा
1: इनटू वन
0: कहानी
1: इन द प्रेजेंस ऑफ आवर इटर्नल
0: मोहन
1: गुरु
0: लाल न पायो री
1: सत्संग जी as you sitting in this dirbar
0: बुला बुला
1: with
0: मल्ला
1: Guru Sahib
0: पंजवा
1: as the supreme power
0: मोरी
1: suddenly comes
0: एन
1: the collective
0: जाए
1: responsibility
0: दर्शन
1: to please
0: पावत
1: maintain
0: हे
1: the integrity and
0: राज्य नाथ
1: decorum
0: ही
1: of the dirbar which
0: चाही
1: means
0: संतना
1: absolutely no talking
0: आव चरण कहे
1: राव
0: राव
1: and paying attention
0: आए मान
1: सब तो पहला
0: अवर न
1: जरूरी बेनती है
0: पावे
1: सत्संग
0: जी
1: अपने
0: चरनावे
1: जो निजी विचार ने
0: उल्जो
1: कमल
0: वाल
1: पता ने
0: मकरंद
1: कृपा
0: कमल
1: करके
0: ज्यों
1: उन्हें संकोचन दी कृपालता करो चुप दा दान
0: आन राज नहीं
1: बख्शिश करो
0: चाहे के
1: अपनी सरत
0: हरियाला
1: अपना
0: है
1: ध्यान
0: अंते
1: शब्द विच
0: टूटी है
1: जोड़न
0: रखते
1: जतन
0: छूटी
1: करना
0: है
1: जिथे
0: मन हार रज कूटी है संग साधु
1: अरदास बेनती
0: करनी है
1: उठे
0: आन
1: ही
0: नाही नाही
1: गुरु
0: रे
1: साहिब पासो से अपनी
0: नानक
1: झोलियां भी
0: प्रीत
1: खुशियां ते
0: चरण
1: खेड़ दे
0: चरण
1: नाल भर के
0: है
1: जाए।
0: राग
1: इस करके
0: बुलावल मल्ला
1: जिन्हां
0: रामां
1: गुरमुखां नूं
0: पदे
1: बाणी कंठ है जो बाणी पढ़ सकदे ने ओह भी नाम
0: ओंकार
1: गुरु बाणी दे कंठ कर
0: सतगुर
1: बाकी संगतां वास्ते स्क्रीन लगियां ने आप जी फॉलो कर सकते हो। आओ दोनों ही परिवार की जानकारी दास साहब जी ने सन्मुख रख रहे हैं।
0: जानो अजामल कलंक
1: काका जी प्रभदीप सिंह रंधावा
0: जी आ जानो
1: सुपुत्र सरदार बीरम सिंह जी रंधावा ते माता जी समरजीत कौर रंधावा
0: सेन हूं
1: परिवार दा पिछेरा पिंड धानोवाली
0: राम
1: जिला जलंधर पंजाब ते ऐसे परिवार शरीफ जी सी दा निवासी है।
0: त्रों बारक
1: प्रभदीप सिंह दे दादा जी सरदार बख्शी सिंह जी रंधावा दादी जी का नाम माता चरण कौर रंधावा है। इन्हां दे नाना जी सरदार अवतार सिंह जी गाखल अते नानी जी बीबी जगी कौर इसी लड़का परवा कमिंग टू द ब्राइड बीबा जी सिमरन कौर ढिल्लो सुपुत्री सरदार कुलविंदर सिंह जी ढिल्लो अते माता जी राजविंदर कौर ढिल्लो परिवार दा पिछलेरा पिंड ढिल्लवां डिस्ट्रिक्ट कपूरथला पंजाब अते सौखे परिवार बीसरी पीसी दा
0: निवासी है।
1: सिमरन कौर दे दादा जी सरदार पाल सिंह जी ढिल्लो अते दादी जी दा नाम माता महेंद्र कौर ढिल्लो है। इन्हां दे नाना जी सरदार मक्खण सिंह जी खेड़ा अते नानी जी माता प्रकाश जी
0: गुण गावे
1: कहो नानक
0: के
1: वेद
0: को प्राणी
1: जानकारी
0: हुण सत्संग
1: दी
0: आरंभता
1: दी
0: अरदास
1: होवेगी जिस विच
0: आपां
1: भी
0: राम
1: सिंह
0: मल्ला रामा जा
1: मैं
0: भजन राम
1: अपने
0: को नाही
1: तेरा
0: जन्म कार्त होया जय राखो मन माही राव
1: right and the group
0: tirat
1: par bhagwan ko and the parents
0: mera
1: bad
0: sir ki sarpa ko ne bol dharm ta hai tum mano saj ke tum ja ka
1: gyani harbans singh ji
0: jai
1: granthi
0: jal mai rakhi
1: gurudwara sahib sukh sagar
0: hidayat
1: upranto satguru da mukhwa
0: pani
1: gyani surinder singh ji aap ji sarvan karon ke aao
0: tai
1: prem sahib haazir dilwaiye ji wahiguru ji ka khalsa wahiguru ji ki
0: kal mai mukt naam te paavat gur ji bheed batave कहो नानक सो नर गुरुआ जो प्रभु के गुण गावे बलावल अटपदिया महला पहला घर दसवा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद निकट बजा देख सब सोई गुरमुख बिरला जय कोई बिन भै पया भगत न होई ਸਭ ਧਰਤੀ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਪ ਚ ਰਸ ਰਸ ਮਾਨ ਰਹਾਉ। ਗਿਆਨ ਗਿਆਨ ਕਥਾ ਸਭ ਕੋਈ, ਕਥ ਕਥ ਬਾਦ ਕਰੇ ਦੁੱਖ ਹੋਈ। ਕਥ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਰਹਿ ਨਾ ਕੋਈ, ਬਿਨ ਰਸ ਰਾਤੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸਭ ਗੁਰਤੇ ਹੋਈ, ਸਚੀ ਰਹਿਤ ਸਾਚਾ ਮਨ ਸੋਈ। ਮਨ ਮੁਖ ਕਥਨੀ ਹੈ ਪਰ ਰਹਿਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਨਾਵੋਂ ਭੁੱਲੇ ਥਾਉ ਨਾ ਕੋਈ। ਮਨ ਮਾਇਆ ਬੰਧੇ ਹੋ ਸਰ ਜਾਲ, ਘੱਟ ਘੱਟ ਵਿਆਪਰੇ ਹੋ ਵਿਖ ਨਾਲ। ਜੋ ਆਂਜੈ ਸੋਧੀ ਸਹਿ ਕਾਲ, ਕਾਰਜ ਸੀ ਦੋਰ ਦੈ ਸੰਭਾਲ। ਜੋ ਗਿਆਨੀ ਜਿਨ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਮਨਮੁਖ ਹੋ ਮੈਂ ਪਤ ਗਵਾਈ। ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਭਗਤ ਕਰਾਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਪੇ ਦੀ ਵੜਿਆਈ। ਰਹਿਣਾ ਧਾਰੀ ਨਿਰਮਲ ਜੋਤ, ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਝੂਠੇ ਕੁਚਲ ਕਸੋਤ। ਬੇਦ ਪੁਕਾਰੇ ਭਗਤ ਸਰੋਤ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਮਨ ਵੇਖੈ ਜੋਤ। ਸਾਸਤ੍ਰ ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਮਿੰਗ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧ ਉਤਮ ਕਰਾਮਿੰਗ। ਮਨਮੁਖ ਜੋਨੀ ਦੁੱਖ ਸੁਹਾਵਿੰਗ, ਬੰਧਨ ਟੂਟੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬਸਾਮਿੰਗ। ਮੰਨੇ ਨਾਮ ਸੱਚੀ ਪਤ ਪੂਜਾ, ਕਿਸ ਵੇਖਾ ਨਾਹੀਂ ਕੋ ਦੂਜਾ। ਦੇਖਾਂ ਭਾਵੈ ਮਨ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਕਹੈ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਬਲਾਵਲ ਮੁਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਮਨ ਕਾ ਕਹਿਆ ਮਨ ਸਾ ਕਰੈ। ਇਹੋ ਮਨ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਉਚਰੈ, ਮਾਇਆ ਮਦਮਾਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੈ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਮੁਕਤ ਮਨ ਸਾਚਾ ਭਾਵੈ। ਤਾਨ ਧਾਨ ਕਲਾਤ ਸਭ ਦੇਖ ਬਿਮਾਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਰਹਾਉ ਕੀ ਚੈਨ ਰਜ ਭੋਗ ਖੁਸ਼ੀਆ, ਮਨ ਕੇਰੀ ਧਨ ਲੋਕਾਂ। ਧਨ ਲੋਕਾਂ ਧਨ ਭਸਮੈਂ ਢੇਰੀ, ਕਾਕੂ ਕਾਕਰ ਲੈ ਸਭ ਬੈਲ।
2: ਸਾਹਿਬ ਜੀ
0: ਸਭ ਨਹੀਂ ਉਤਰੈ ਮੈਲ। ਗੀਤ ਰਾਗ ਕਨ ਤਾਲ ਸੇ ਕੂਰੇ,
2: ਤਰਨ ਸੁਬੰਨੀ ਖੜਗ ਤੰਜੜਾਵੀ।
0: ਦੂਜੀ ਦੁਰਮਤ ਸਰਦ ਨਾ ਜਾਏ, ਛੂਟੈ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾਰੂ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਤੂਤੀ
2: ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੁਰਖ ਮਨ ਉਠਾ,
0: ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ ਮਾਇਆ ਮਦ ਪੀਆ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਭਗਤ ਨਾਹੀ
2: ਸਭੇ ਕਾਜ ਸੁਹਿਲੜੇ ਥੀ।
0: ਮੰਜਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਮਲੇ ਚ ਨੀਚਣ ਡਾਲਾ,
2: ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁੱਠਾ।
0: ਬੰਧਨ ਬੰਧ ਆਈਐ ਜਾਈਐ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਲੈ ਪਦਾਰਥ।
2: ਧਰ ਜੀਰੇ
0: ਪੂਜਣਾ ਹੋਏ,
2: ਟੇਕ ਤੂੰ
0: ਹੁਕਮ ਸੀ ਜੈ ਦਰ ਸੋਏ।

0: साज चोर लगैया धर्म
1: सबके मन लोच
0: पैया कंचन को
1: परिउपकार नित चितवते
0: तज करहेरु आए लोक।

हर पाया बलराम जियो, गुरमुख मिलया सुपाए, हर मन तन मीठा लाया बलराम जियो, हर मीठा लाया मेरे प्रभ पाया, अन दिन हर लिव लाई

माहे आधार नारायण बोहित संसार नारायण कहत जम भाग पलायन नारायण दंत पाने डायन नारायण साध साध भगसिंद नारायण कीने सुख आनंद नारायण प्रगट कीनो प्रताप नारायण संत को माई बाप नारायण साध संग नारायण बारंबार नारायण गायन वास्ते गोचर गुरमिल लई नारायण ओट नानक दास गही गुण महला पंजवा जाको राखे राखण हार तिसका अंग करे निरंकार रहाओ मात घर में अगर न जोहे काम क्रोध लो मोह न पोहै साध संग जपे निरंकार निंद कह मुक लागे शार राम कवच दास का सना हो दूत दोस्त तिस पोहित नाए जो जो गर्भ करे सो जाए गरीब दास की प्रभ शरणाए जो जो सरन पया हर राय सो दास रख्या अपने कंठ लाए जे को बहुत करे अहंकार ओह खैमै रुलता खाकू नाल है पी साचा होवनहार सदा सदा जाई बलिहार अपने दास रखे कृपा तार नानक के प्रभ प्राण आधार गुण महला पंजवा अचरज कथा महा अनूप परमात्मा पार ब्रह्म का रूप रहाओ ना हो बूढ़ा ना हो बाला ना हो दुख नहीं जम जाला ना हो बिनसे ना हो जाए आदि युगादी रहा समाए नायस उसण नहीं इस सीत नायस दुश्मन नायस मीत नायस हरख नहीं असोग सब कुछ इसका ही करने जोग नायस बाप नहीं इस माया यह अपरंपर होता आया पाप पुन का इसलिए ना लागे कट कट यंत्र सद ही जागे तीन गुणा एक सख्तो पाया महा माया ताकी है छाया अशल शेद भेद दयाल दीन दयाल सदा कृपाल ताकि गत में ते कछु न जाए नानक ताके बल बल जाए गुण महला पंजवा संतन कह बलिहारे जाओ संतन के संग राम गुण गाओ संत प्रसाद किलवक सब गए संत शरण बड़भागी पे राम जपत कछ बिघन ना व्यापे गुर प्रसाद अपना प्रभ जापे रहाओ अपार ब्रह्म जम होए दयाल साधु जन की करे रवाल काम क्रोध स्तंते जाए राम रतन वसे मन आए सफल जन्म ता का परवान पार ब्रह्म निकट कर जान पाए भगत प्रभ कीर्तन लागे जन्म जन्म का सोया जागे चरण कमल जन का आधार गुण गोविंद रौ सच व्यापार दास जना की मनसा पूर नानक सुख पावे जन तूर राग गौण अष्टपदिया महला पंजवा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कर नमस्कार पूरे गुरदेव सफल मूर्त सफल जाकी सेव अंतर जामी पुरख विदाता आठ पैर नाम रंगराता गुर गोविंद गुरु गोपाल अपने दास को राखन हार रहाओ पातशाह साह उमरा उपतियाए दुष्ट अहंकारी मार बचाए निंदक कै मुख कीनो रोग जय जयकार करे सब लोग संतन कै मन महा आनंद संत जपे गुरदेव भगवंत संगत के मखूजल पए सगल थान निंदक के गए सास सास जन सदा सलाहे पार ब्रह्म गुर वे परवाहे सगल पै मिटे जाकी सरन निंदक मार पाए सब तरन जानकी निंदा करे न कोई जो करे सो दुखिया होए आठ पैर जन एक त्याए जमुआ ताके नित ना जाए जान नरवैर निंदक अहंकारी जान पल महने निंदक बेकारी गुर के सिख सतगुरु त्याया जन उभरे निंदक नरक पाया सुन साजन मेरे मीत प्यारे सत बचन वरत हर द्वारे जैसा करे सो तैसा पाए अभिमानी की जड़ सर पर जाए नी तरिया सतगुर तर तेरी कर कृपा राखो जन केरी कहो नानक तिस गुर बलिहारी जाके सिमरन पैज सवारी राग गौंड बाणी भगता की कबीर जी कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद संत मिले के सुनिए कहिए मिले संत मस्त कह रहिए बाबा बोलना क्या कहिए जैसे राम नाम रव रहिए रहाओ संतन स्यों बोले उपकारी मूर्ख स्यों बोले चखमारी बोलत बोलत बड़े बिकारा बिन बोले क्या करे बिचारा कहो कबीर शूशा कट बोले परया होए सो कबू न डोले गौंड नरु मरे नर काम ना आवे पशु मरे दस काज सवारे अपने कर्म की गत मैं क्या जानो बाबा रे रहाओ हार जले जैसे लकड़ी का तूला केस जले जैसे कास का पूला कहो कबीर तब ही नर जागे जमका डंड मूंड में लागे गोंड आकाश गगन पाताल गगन है चौदिस गगन रहाइले आनंद मूल सदा परखो तम कट बिन से गगन न जाइले मोहे बैराग पयो एहो जियो आए कहाँ गयो रहाओ पंच तत् मिल काया की नी तत् कहाँ ते की रे करम बद दुम जियो कहत हो।

दिया तिसेना। चेते मूल विद्या लूप नव त्रय मूले पापलुम जपहि दयाल इवमन हुआ साधुआ हथ कमल लाड़ लीनु लाई नानक साचे सा समाई। राम कली महला पंजवा राजा राम की सुनाई निरपो पई।

रहाउ। कल कलवारी शरण बीड़ा काजी कृष्ण हुआ बाणी ब्रह्मा बिद तर्पण करणी कीरत लहिया।

मौत के मुक्त नहीं विद्या विख्या देवा इंद्रिय साध लुभाना पशु पय नहीं मिटे निशाना त्रिपद रोगा त्रिपद जोगा त्रिपद विचारे चूक भोगा उजले सासो शब्द हुए जोगी ज्योत विचारे सोए तुझ पै नौन तू करने जोग थाप थापे करे सोग जाता संजय सा सुचित नान जोगी तृपण भी त्राम कली मोहला पहला खट मट देहि मन बैरागी सब सुरत अंतर जागी वाजे अनंत वीरा मलीना सगुर सबदी सच नाप दीना प्राणी नाम भक्त सुख पाइये गुरमुख हर हर मीठा लागे हर हर नाम स्वाई रहा माया भो विवर समाया सतगुर पीटे मेल मिलाए नामरतन हीरे निर्बोल खीरा तितरा तामे रामती राहो मैं मुतारोग न लागे

मन नहीं सोचा क्या सोच गिरी जय कीर्त प्रया दूत काकू दीजे अंत नाम कंत नाम खाहे देही दुख दी जय बिन गुरु ज्ञान तृप्त नहीं ती जय जन मन मुख जन्म है जन्म री जय सतगुरु।

अमेरुक महादुख लागा द्रुपति भूरु गया सुख संपत्ति कहो सुख संपत्ति को आप तू दिखे साथ तुम्हारे विमान प्या जिसका इहू तन तन सो फिर लिभय अंतरे सहसा दुख पया अंतकाल कश साथ न चले जो जी सहसा जिसय मैं आदि पुरखे परम्पर सुप्राभ कर नाम हृदय लय पार पया मुवे कौ रूपय किस सुना वय पय सागर सरार पया देख कुटाम गृह मंदिरे साक्त जंजाल परार पया जा आई तां तिने बुलाए छाले तिने बुलाए लिया जो कुछ करना सो कर रहा बख्शन हरे बख्श लिया जिन इहो जाख्या राम रसायन तिन की संगत खोर पया रित सिद्ध बुद्ध ज्ञान गुरु ते पाई मुक्त पदार्थ धरण पया दुख सुख गुरमुख साम कर जाना हर सुख में बिरक्त पया आप मार गुरमुख हर पाई नानक सही समाई लिया राम कली दखनी मोहला पहला जत ससंजम सी जत ससंजम सात तिरड़ा सात सब्द रस लीना मेरा गुरख दयाल सदा रंग लीना ऐस रह एक लिवलागी सच दीप तीन रहाऊ रहे गगन पुर दिटू समय सर अन शब्द रंगीना साधु को पीन परपुलीना जीवा रंग सीन मिले गुरु साजे जय रच रच कीर्त विचार पतीना एक मह सर सर मह का ई सतगुरु देख दिखाई जिन की खंड मंडल प्रमंडा सुप्रभ लखन जाई दीप ते दीप को प्रकाशया तिरपन जोत दिखाई सचे तख्त सच मैली बैठे निरपव ताड़ी लाए मोह गया बैरागी जोगी कटके किंगरी भाई नानक सरण प्रभु ते छूटे सतगुर सच सिखाई राम कली महला पहला

आपे कर्ता कारी काया सोध तरय भाव सागरी तात्म तत्वी चारी गुर सेवा ती सदा सुख पाए अंतर सुदर व्या गुणकारी आपी मेले सुख गुणदाता हमें दर्शन मारी त्रै गुण मीटे चौथे वरते ई अस्तर त्रै गुण मीटे चौथे वरते इहा भक्त निरारी गुरमुख जोग सब आत्म चीने हृदय दीक मुरारी मनुआतर सबदे राता इहा करणी सारी बेद बाधना पाखंड अवधु गुरमुख शब्द भी चारी गुरमुख योग मावे अवधु जा

जैसे प्रायत संसंग बिलाते ज्यो सब उनका पर उजल होते नाचपत सब प्रमुख होते ज्यो चकवी सूरज की आते ज्यो चादर बूंद की प्यास ज्यो कृंगनाथ कर स्वामी त्यों हर नाम हर जन मन है सुखाने तुम्हारी कृपा ते लागी प्रीत दर पहिताय चीत दर तारी तन तारण हार बंधते हुए छुटका सब थान दी के नैन रोहित बिंदु जावरण कुए ब्रह्म पै छुटे गुर प्रसाद नान भिखो सब स्वा राम कली महला पंजवा जी जुत सब प्रेखिए प्रसल तुम्हारी तारणा इवन हर के नाम उतारण हो खिन मेहताब ताप दे सब करते के कारण काम क्रोध लो चूट निंदा साधु संग बिदारणा नाच बतमान दिर्बल हुए सुखे सुखे दारणा पत्रन जो आवे ना तिया उहान हारणा दुख सुखे समान की वृथा तुम ही आगे पालना तू सुखे से मन की वृथा तुम ही आगे तारणा तू दाता सपना जिया का अपन किया पारणा अंक बार कोट जान ऊपर नानक बंजे बारणा राम कली महला पंजवा पदी की ओंकार सतगुर प्रसाद दर्शन भीट ते पाप सोमनाथ से अर्थों दी मिलाई मेरा गुरु परमेश्वर सुदाई पाप ब्रह्म का नाम दृढ़ाई अंत हो सखाई राहु साधु का डेरा पन्ना संतूड मुख लाई पत्नी की अखिन पीतर अज्ञान अंधेर बजाई करण कारण सुमरा स्वामी नाथ तिरणाई बंध तूड़ चरण कमल दृढ़ाई एक शब्द ले बलाए अंध कूप विख्या ते काढ़ियो साज शब्द बण आए जनमन का संता चुका बहु नक तू ताई नाम सने इव मन राता अमृत भी दृताई संसंग मिल कीर्तन गाया ने चल वसिया जाई

तारी अंतर सुखा बाहर सुखा हर जप मन पै दुटाई जते रागे सह निवारी प्रभ जी अपनी कृपा तारी उदरे संत प्रिया तरणी।

अंत विनोद अनंत कूटे प्रे प्रीतम संग बने मन बात फल पाया हरि नानक ना बने शंते हिमकर उत्पन्न पापती पाप गुण गुणवंत जियो सखी सहेली गौ मंगलो ग्रह आय हर कंत जियो ग्रह लाल आय मंत्री आये ते सुंदर सोया भंत त्रिपण पूरे वर्त त्रिपण पाए हरिया दिख दर्शन बोहिया मिले स्वामी शिष्य पुनि मंज प्या निर्बल मंत जियो बिनवंत नारित करहो कृपा हरे त्रिवे त्रि तरकंत जियो श्लोक साई जी के पवजल तारण हार सब ती उचे जानिए नानक नाम प्यारे जिन जन से तिरे से दूरे से वीर नानक तेन मुख बलिहारणे हर जप उतरे तीर स्लोक चरण बिरात सब प्रेम मिटिया सगल कले जीव आवण जान दुख करे हर भगत।

अग्नि अस्वरूपा एको पावर पवै त्योलोय एको भुजे सूजे पतोय ध्यान जाले संसार रहे गुरुमुखी बिरला को लय सुनु देहि कृपा ते सुख पाए गुरु द्वारे आग सुनाए ऊर्म तुनु जोत जाला तीन प्रमणा गुरु गोपाला उग्व अस्वरूप दिखावे कर कृपा अपने करे आवे उनु उनु बसै निचित हारा उग्व अस्वरूप उनु बसै निचित हारा उत्तम सब सवारण हारा इसे के कहा जाने पे आपे करता पे देव उग्वै सूर असुर संघारे ऊंचो देख शब्द विचारे ऊपर आदि अंत ते हो लोई आपे करे कथे सुन सोई ओह बेदाता मन तन दे ओह बेदाता मन मुख सोई रब जग जीवन अवरण कोई नानक नाम रति पत होई राजे राव रवेत कारण मैलू जमनु अमार रात दिन सरह रंग राता तीन पवन जुग चारे जाता जे जाता सुति सी जे आत निर्वाह लसी दिया रहती रव देख भाई अंतर सा शब्द साच ले लाए रोशन की जय अमृत विजय रहे नई संसारी राजे राय रंग निरण आए जाए जुग चारे रहन कहते हे करहन कोई किस पै करो बिनंती एक शब्द राम नाम निरुद्र गुरदेव है पातमती लाज मरंती मर गई कुंकट खोट चली सा दीवानी बावली सत्य संकटली प्रेम बिलाई रेली सुमन में शब्द आनंद